जिनकी थी सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रया। सोदर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर।

तेरी भगत तेरी भगत पंडार जी परे बिंद बेंता तेरे भगत सलाहन तुद जी

तिस्य का सबस अधारो। जे को खावे जे को पुंचे किसका होए उधारो। एहे वस्त तजे नह जाए नित्य

चाप भगवंत सगल सामग्री तुमरा सूतर तहारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम्हें जानी नानक दास सदा कुर्बानी बुरना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दसे हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई होए सहाय दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान सब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देग के अण डिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आरिया ना चराए गुरुद्वारिया की सेवा लिये कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी के सास वसन सिंह निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित्यावाए चितावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तह तह रश्यारियाज देखते फतेह बिरध की पाए पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हिन माण्यो के मान नितानक तां लुटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी दे चरणा अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश होई शामा दे दीवाना दी अरंभता हुई महाराज जी संगती रूप विच संपूर्ण सुखमणि साहब जी दे जाप होए ने संध्या वगदा समा जान के सौदा रहरा साहब दे जाप ए महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़दिया आप जी की सेवा संभाल करदिया होइया बेअंत बेअंत भुला बख्श देनिया जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालू तों बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईया संगतां दे हिरदिया ते वसाउणा आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनिया सभना नूं दरों करो नाम दान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशा रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशा विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बेअंत संगतां दूर दराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी ते जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे आं बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते उन्हां ने भेटा कीती महाराज जी सारी संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी महाराज जीओ आप जी दे दर घर दे सेवक सुरगवासी सरदार गुरप्रीत सिंह बैंस दी तीजी बरसी ते परिवार वालों अरदास बेनती करदे आं $100 गुरु घर वास्ते भेटा कीते कृपा करनी जीओ
ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋਸ਼ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोई, वेद सिमरत कथे सासत भगत करे विचार, मुक्त पाइए साध संगत बिनस जाए अंधार, चरण कमले आधार जन का रास पूंजी एक, तान मान दीवान सचा नानक की प्रभ टेक। वाहिगुरु बहुत कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए,

मनमुख जन्म गवाया, बिखिया माया जिन जगत भुलाया, साचा नाम न पाया, मनमुख सं

नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवय नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास दिसंबर इकै, नाम जपत अगणत अनिकै। वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर, कीने राम नाम एकाख्यर। किनका एक जिस जीव बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। काकी ये कह दर्श तुहारो, नानकुन संग मोहे उदारो। सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम, भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्व न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन ठरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माही समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेदु पाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई,
मन उहां नाम तेरे संग सहाई। जय महा प्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हुए अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिखन बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार्ग ज्यों जात किला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत है पार पराही। अनिक बिघन जय आई सिंगार है, हर का नाम तत्काल उदार है। अनिक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हो मैला मल कबू न धोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइयै साध कै संग। जिह मार के गण जाहि न कोसा, हर का नाम उआ संग तोसा। जिह पैडै मंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महाभियान तप्त बहुकाम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। यात्रिका मन तुझ आकर्षै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भक्त जना की वर्त नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन किन्नु दान। मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। पोत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात्यो हर को नाम, ताम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता। नाम की महिमा संत हृदय, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अबर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। इसलोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, वेखे सर्व ढंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग मन मध्य प्रिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो में कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, महा उदास तपी सर थीवै। अगन माहि होमत प्राण, कनिकसव है वर भूम दान।
न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी हों में मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि, मन कामना तीर्थ देह छुट्टै, गर्व गुमान मन ते हुट्टै, सोच करे दिन सरात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही कौ बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो है बहु देह अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत, मन हर के नाम की मैं माऊच, नानक नाम उदरे पतत बहमूच, बहुत सयानप जम का पौ व्यापै, अनिक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै, एक अनेक अगन ही बुझै, कोट उपाव दर गय नहीं सिजै, झूठ सनाही उपयाल, वोहि व्यापै माया जाल, अवर कर तू सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लूरे, साध संगे हों मैं छूरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ता कै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, सास जाका मिटै विमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते ऊंचा, जाका मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सिर साजना, सुख दुख जन समदृष्टिता, नानक पाप नहीं लिपा, निर्धन को तन तेरो नाओ, नितावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान, करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानू आपे, अपन संगा प्रवराते, तुमरी उस्त तुम ते हुए, नानक कवर न जान सकोए, सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम मैं उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जसन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जे घट वसै हर नाम, सुलो निर्गुण यार इयानिया, सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निबही नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सी गारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया, पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पार जोबन भोजन सुख सूद, बिरद पयाओ पर साख सैन, मुख पयाओ बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे, बख्श लेहो तो नानक सीझे, जे प्रसाद तारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जिह प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक मुला, जिह प्रसाद भोगै सब रसाओ, सगल समग्री संग साथ बसाओ, दीने हस्त पाव कर नित रसना, तिसह त्यागवर संग रचना, ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे,

मन हिलावै, जो ठाकुर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगह मान, किसे बिसारे मुग्द अजान, सदा सदाए भूलनहार, नानक राखनहार अपार, रतन त्या कौडी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो हो वन सो दूर फरानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्धभ प्रीत पशु संग हुए, अंधकूप में पतत विकराल, नानक काढ़ लेहु प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पे अंतर मल माया, छपस नाही कछ करे छिपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरह यथाहा, जाके अंतर बसे प्रव्याप, नानक तेजन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गहले हो ओढ़ निभावै, कहां बुझारत बुझै डूरा, निष्कहिए तो समझै पूरा, कहां विष्णु पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हां उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाय सुआवै न चीत, जो बैराई ता स्यो प्रीत, बलवा के गृह भीतर बसै, अंध केल माया रंग रसै, दृढ़ कर मन मनह प्रतीत, काल न आवै मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लिहु अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सुआग्याकारी, तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुआए, नान कहू न सी जई बिनड़ावे पत जाए, अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण विकोट गवावे, एक पी ना दे दस पीर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन उठा, जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व तोग नानक तिन पाया, अगंत साहु अपनी दे रास, खात पीत बरतैन दोलास, अपनी अमान कच बहुर साहु, ले अज्ञानी मन रोस करे, अपनी परती ताप ही कोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्ति से आज्ञा राखै, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अलिक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिर की छाया सो रंग लावै, ओ बिन सै ओ मन पछतावै, जो दिसै सो चालन हार, लपट होते अंध अंधार, बटाऊ स्यो जो लावै नेहि, ताको हाथ न आवै केहि, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हों मैं ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल,
मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ स्त्रिय सुवस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रैरुपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कहूत सूचा, बिरता नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन जिन रैन वृथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों किरपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रह तवर कछवर कमावत, मनी प्रीत मुख गंडलावत, जन नहार प्रभु परवीन, बाहर पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन मैं मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पहमाने, अपह आप आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव से अनुप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहा समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी, श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहंग मेव, नानक प्रभु शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जे परसा छत्ति अमृत खाहे, तिष्ठा कुर को रख मन माहे, जे परसा सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याहि सदा मने अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसे त्याकत अवर लुभावै, जे प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैर ताका जस गावी जय, जे प्रसाद तु सब को माने, मुखता को जस रसन बखाने, जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जप दर गहमान पावै, नानक पत सिती कर जावै, जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम सुनेही, जे प्रसाद तिरौला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे, जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद अपुखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय, जे प्रसाद सुहस्त सुवारी, मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख प्रोय प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठ सत सहत आई, तिसहत आए जो एक अलख है,
ਨੀਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਿਤਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵਹਿ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਓ ਰਾਚ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ। ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੁਰ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਇਆ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਥ। ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ। ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪਰਮਾ ਹੈ ਸਮਾਨੀ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਖ ਤੂੰ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ।

आसंग बस्त गोचर लह साधु कै संग जर सह साध के संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुचै साध के संग दिड़ै सब धर्मू साध के संग केवल पार ब्रह्मू साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधारै सा संग साजन बीच कुटम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय कर सेवा साध कै संग शोभ असुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध संग प्रभ थान गमो नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कचकाल दर्शन भेट धोत निहार साध के संग कलोकत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग बिछुरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध के संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध हृद बसै नानक कुदरे साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट रीठा साध संग कहे आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जीता सुने तेता बखियान है साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै कुछ बिन कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य मान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यो बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगाश जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपना है सबसे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टम मृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले ताहुत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत

पाया पूरे के गुण गावस्तुवदी। पूरे गुर का सुनुपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक सा सा सिमरहु गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागु तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संगगन सागर तरहो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाथ वाजै सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आई कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभही के पामारी प्रभ की उस्तद करो संत मीत सावधान कागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सोहोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब त्यूच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त हुए खेम शांत रित नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत हुए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सत्संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभु चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि सुमानी दुख रोग बिन से पह

सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया भाउ अपार आखै है मंगै है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया।

आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक ससियों लिव लाए, कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तय सार न जानी, तत्तय सार न जानी गुरु बाजहु तत्तय सार न जानी, तिहि गुणे संसार भ्रम सुता सुतिया रहण विहाणी, गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया, बोले अमृत बाणी, कहे नानक सो तत पाए, जिसनो आन दिन हर लिव लागे जागत रहण विहाणी, माता के उदर में प्रत पाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, ये वरदाता जे अग्न में आहार पहुँचावे, ओसनो केहो पोहे न सकी जिसनो अपने लेव लावे, अपने लेव आपे लाए, गुरुमुख सदा संभाली है, कहे नानक ये वरदाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जे ही करता खेल रचाया, जात इस भाणा ता जमया परवार भला पहाया, लिव छुड़ की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाउ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया, हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुरु जी मिलै तिसनु सिर सौंपीऐ विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसै मन आए, हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए, हर रास मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा सतगुरु ते रास जानी, हर हर नित जपे हो जी हो लाहा खटे हो दिहाड़ी, इहो धन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा, कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू आन रास राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै जिचर, हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए, इहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए, कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरेया हर तुम मैं ज्योत रखी तातू जग मह आया, हर ज्योत रखी तुद विच तातू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया, कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया ज्योत राखी तातू जग मह आया, मन जाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया, हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापय, आन हत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरेया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जातू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत तहरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई नदरे हर निहालिया, ए विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई, कहे नानक ए नेत्र आंद से सतगुरु मिलिया देव दृष्ट होई, हे सरवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हो रसना रस सुमाणी, सच अलख विडाणी ताकि गत कही न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचै सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाउ नवनिध तिसदा अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारा है जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन बजाया,
ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸਾਚਾ ਘਰ ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ।

0: वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला
1: बलिहारी गुरिया अपने

सेवा कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जना मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदी क्रम लंघाए पार बोलू चरखा चक्की चक थल वरो ले बहुत आनंद लाटू मां दाणियां गाह पंखी पौंदियां लैना सहा सूए चढ़ पवाइए जंत नानक पौंदियां गण

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय कर है प्यार।
1: धर्मी धर्म करेगा वह वह मंगे मुख द्वार, जती सदावे जुक्त न जाने छड बह कर बार। सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आखे।

दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नही जाहो करी न होए। बलिहारी कुद तवस्या तेरा अंत न जाई लखिया। रहो जात मह जो जोत मह जाता कलकला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल।

कपह संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी का हई ता पांडे घत ना एह टुटा ना मल लगा ना एह जला न जाए तन सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकण मुल अनाया।

आपे भांडे साजियां आपे पूरण दे एक नी दुसमाइया एक चुल्ला रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक उपरहन खड़े।

बिन भगती सुख ना होई, दूजे पत खोई, गुरमत नामे आधारे, वखर नाम सदा लाभ है, जिसनो एत वपार लाए, रतन पदार्थ वन जिए, जां सतगुर दे बुझाए, माया मो सब दुख है खोटा।

पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे, बिन बूझे सुख न होई। आवण जाना कदे न चूके, माया मो प्यारा, माया मो सब दुख है, खोटा ए वपारा। खोटे

जिन जगत पोलाया सचा नाम न पाया। मन मुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा, खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा। राम आप करे किसे आखिए और करना किछु न जाई। राम जित पावे तित लाए सी, ज्यों तिस दी वडे आई। राम ज्यों

मन की बिद सतगुर ते जाने। अनदिन लागे हर स्यों सद हर स्यों ध्यान, अनदिन लागे सद हर स्यों ध्यान। गुर

जिस हर हर कृपा करे तिसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन का

होकर आए, बाणा भी पा लिया, अमृत भी छक लिया, पर जे अंदरों कपट न गया कि कोई फायदा